0: چیره او دونه وخت کې چیره او اجي
1: را کراچی له سره
0: ها
1: کراچی له سره ټیلر کې نه بیاو یا
0: چی ټیلر کې
1: بلان
0: وله دا کولې پرې شول
1: لا اوس نه جا په کولې کې
0: ها
1: او چې ټی کړم نه سه دې میاسم وته
0: دوه میاشتې وکړې دا که غټ سایز درته جوړ کړم اجي
1: پاره کښوی جوړ
0: ها واو اجي څنګه ته زړلې د مور دې वो क्या है तने
2: अच्छा भाई भाई चाय के बारे में बताएं कि अभी चाय आप बाहर से क्यों नहीं मंगवाते यहाँ पे क्यों पीते
0: बस दानियल भाई इस तरह ना बाहर से चैनक भी सही नहीं है फिर उसका चाय भी सही नहीं है इसी खातिर से चाय मज़े जायका नहीं है इधर ही खुद बनाता हूँ जायका भी सही है ना हाँ इसी खातिर से
2: और आज कैसे कारोबार कैसा हुआ
0: आज अच्छा है थोड़ा सा खाम मखा डिले है बाजार अच्छा है टक टुक है मगर फिर भी डिले है बाजार
2: डिला क्यों है
0: मालूम नहीं है पहली आखिर है दानियाल भाई इसी खातिर से बस दानियाल भाई अभी हमारा इंटरव्यू हो गया अभी आपका है
3: ये कौन दे
0: दानियाल भाई ये सुर्ख रंग है
2: वो ठीक देख करो दोबारा सब खत्म करके ये दिनों कभी कभी नजर आता है फिर नहीं आता
0: बस ओके है अभी
2: सुर्ख है
0: नहीं नहीं अभी फुल वो हो गया अभी इसको सही करेंगे ओके दानियल भाई
2: सही क्या इंटरव्यू करने
0: दानियल भाई आप बेल्जियम कब से गया हुआ
2: मैं बेल्जियम अभी मुझे 8 महीने हो गए
0: हैं 8 महीने
2: हाँ
0: किस तरह गया है वो आप
2: यार मैं पढ़ने गया हूँ आप स्टूडेंट वीजा पे गया
0: हूँ मैं जा सकता हूँ दानियल भाई
2: आप भी जा सकते हैं आपकी तालीम कितनी है
0: हमारा तालीम तो कम है
2: कितनी है
0: 4 जमात
2: अच्छा 4 जमात में देखो 4 मेरी तालीम कोई 16 जमात है ना 16 के बाद मैंने एडमिशन लिया डॉक्टर बनने का PhD करने का ना अगर आपकी तालीम हो ज्यादा तो जा सकते हो नहीं तो आप विजिट पे जा सकते हो
0: सही सही सही
2: विजिट का वीजा लगाओ
0: विजिट का वीजा
2: उस पे आप जा
0: सकते 1 महीने के लिए सही सही
2: आप बेल्जियम क्यों जाना चाहते हो
0: बस इसी तरह हमने बोला एक चक्कर मकर लगा वो यार दोस्त भी है इस तरह मैंने बोला आपसे पूछो कि मैं जा सकता हूँ ये सब तो कुछाक रास्ते का ये वो तो बंद है
2: कौन सा रास्ता
0: ये कुछाक जो जो जाते है चोर वाला रास्ता जो है वो तो बंद है इसी खातिर से मैंने पूछ लिया कि मैं जा सकता हूँ नहीं
2: उसमें कितना टाइम लग जाता
0: है उसमें तकरीबन 8 महीने भी लग जाएगा 6 महीने भी फिर बंदा मर भी जाएगा रास्ते में तो कुछाक रास्ते उसमें तो जिम्मेवारी नहीं है
2: लेकिन अगर वो रास्ता खुला हो आप जाओगे
0: रास्ता खुला हो तो मैं जाऊंगा हमारा वो 2-3 दोस्त और भी है वो भी जाएगा
2: लेकिन आपके घर वालों को क्या होगा
0: घर वाले तो इधर ही है दानियल भाई हम लोग जाएगा देगा उधर ही
2: हाँ
0: शौक है उधर ही जाएगा दानियल भाई
2: फोन आ रहा है फोन उठा लो उठा
0: लो हेलो हाँ खूबी जोर बखैर शुक्र बुगे एन दे वीडियो जोर मुनी तू फोन कर रही यार वीडियो वीडियो चीज़ें जोर नहीं बुगी हाँ बस ये चीज़ ओके सही है वाल गुजाई सही है बोरो खुदा हाफिज बूमर देगा बस रशीद मामा है मुझे देगा कुछ खुदा हाफिज सही सही है सही है खुदा हाफिज हो दानियाल भाई बस अभी आप दुआ करो कि रास्ता खुल जाए फिर हम जाएगा इंशाल्लाह नहीं जाऊंगा दानियाल भाई शौक है
2: वापस नहीं आसू
0: बस वापस इंशाल्लाह कबूली होएगा दानियाल भाई 5-6 साल 8 साल कबूली तो होएगा फिर मिल जाएगा इंशाल्लाह उधरी जबरदस्त है फिर आपके पास भी आएगा गपशप करेगा उधरी फिर चाय बनाएगा पिएगा
2: कारोबार का क्या होगा
0: कारोबार पर छोड़ेगा दानियाल भाई कारोबार का इधर मजा भी नहीं है उधर ही जाएगा अच्छा मौसम भी है दहशतगर्दी भी नहीं है खरा खरारी है इधर तो सही नहीं है दानियाल भाई
2: कैसे लग रहा है आपको मेरा इंटरव्यू लेके मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ कैसा लग रहा
0: है जबरदस्त
2: ये आसान है वो आसान है
0: यार दोनों
2: चलो सही चाय बन गई
0: ओके दानियाल भाई
2: हाँ सही है
0: असल इस तरह ना दानियाल भाई अब थोड़ा थोड़ा समय आपके साथ फ्री हूँ मैं कसम से बंदे किधर बात कर सकते हैं
2: नहीं, सही है।

0: फिर मैं आपसे पूछूंगा तस्वीर आपने किस लिए बनाया, फिर आप बताओ ये तस्वीर किस लिए बनाया आपने, स्ट्रोक के लिए बनाया, फिर मैं उससे आगे सवाल करूंगा, बस आपने जवाब मुझे देना है।
1: सही, ठीक है, अपने सिस्टम से जवाब देना
0: है। हाँ, अपने सिस्टम से।
1: हाँ।
0: अच्छा, आपका नाम क्या है भाई?
1: दिलावर खान।
0: आप क्या करते हैं?
1: मैं यहाँ पे चाय बेचता हूँ, घरवाली का।
0: अच्छा, चाय खुद बनाते हैं या होटल से लाते हैं?
1: नहीं, खुद ही बनाते।
0: और तस्वीर आपने ये क्यों खिंचवाया?
1: ये वैसे शौक की देखें जी।
0: अब क्या करेंगे, इसको किधर लगाएंगे?
1: घर में लगाएंगे, फ्रेम। हाँ, बस फ्रेम में लगाएंगे, घर पे कमरे में।
0: तो ये तस्वीर जो है ये तो ओरिजिनल नहीं है ना, फोटोशॉप किया उसने?
1: हाँ ना, फोटोशॉप है।
0: तो आपके दोस्त वगैरह घर वाले वो मानते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है?
1: तो उनको हमारा शौक है, उनका क्या मसला है।
0: अच्छा,
1: ये तो हम अपने शौक से बनाते हैं।
0: तस्वीर दिखाएंगे कौन कौन सी है?
1: हाँ जी, एक ये।
0: अच्छा, ये क्या है?
1: ये गाड़ी के साथ जो है खींची हुई है, ये तो मिसाल ओरिजिनल लग रहा है। और ये की है,
0: ये क्या है?
1: ये वैसे बस बनाया मशीन के साथ जो है, अपना शौक है।
0: इसका फायदा क्या है?
1: फायदा बस तलवार की तरह से।
2: वो दानियाल भाई, ये जो आप किसी का जो सखाफत मखाफत को जो तस्वीरें खींचते हैं, तो फिर क्या करते हो दानियाल भाई?
0: ये बस काम है ना, कोई अखबार बोलता है कि किसी इलाके में जाओ, उसके बारे में थोड़ा लिख लो, उसके सखाफत के बारे में, उसका तारीख के बारे में, उसका रहन सहन के बारे में, फिर उसका तस्वीर ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर अखबार जो है ना शाया करता है, फिर लोग पढ़ते हैं। इस तरह सिस्टम है।
2: तभी हम कर सकते हैं दानियाल भाई, हम जो इस तरह करें?
0: आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं।
2: अंग्रेजी में दानियाल भाई?
0: नहीं, मैं जो अखबार के लिए लिखता था वो अंग्रेजी वाला है। उर्दू वाला भी तो होता है ना, ये नहीं है जंग अखबार या कोई इस तरह। उर्दू वाला का मसला ये पैसे कम देता है, अंग्रेजी वाला फिर पैसे ठीक दे देते हैं। आप भी कर सकते हैं, बस आपको फिर ये स्टूडियो से बाहर निकलना पड़ेगा ना, आप इलाके में जाओ, कैमरा लेके लोगों से बातचीत करो, इंटरव्यू वगैरह करो, तस्वीर ले लो, लिख लो इस तरह। हाँ,
2: इसके बाद फिर आप अखबार वाले को देते हैं दानियाल भैया, जो इसके बाद दिखता है फिर अखबार वाले को देते हैं,
0: इसको लिख के फिर अखबार वाले को देता है। अखबार में एडिटर होता है, वो उसको देखता है, ठीक करता है थोड़ा कि कोई गलती मलती तो नहीं है, उसको पसंद आ गया तो वो उसमें छापता है, फिर पैसे देता है, नहीं पसंद आ गया तो बस फिर वो नहीं छापता है, पैसे भी नहीं मिलता है।
2: माशाल्लाह, आपने बहुत इलाके पर किया है दानियाल भाई।
0: हाँ, तकरीबन
2: जगह पे गया है, मतलब इस तरह पूछताछ किया है इसके सखाफत के बारे में।
0: तकरीबन इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मैंने देख लिया इसी काम के लिए ना। उस दिन आपको तस्वीरें दिखाया था ना मोबाइल में, पूरा पाकिस्तान में हर इलाका, पहाड़, समंदर, दरिया, हर किस्म के इलाके में गया है। बस शौक भी था, चक्कर का शौक भी था, फिर उसमें से गुजारा भी हो जाता है, कमाई भी हो जाता है, वो क्या है।
2: ये फिर दानियाल भाई, आपका नेट में कोई यूट्यूब यूट्यूब है, आप उसमें भी देते हैं?
0: यार अभी यूट्यूब में तो नहीं देता है, वेबसाइट है मेरा,
2: वेबसाइट है।
0: हाँ, उसमें डालता हूँ मैं,
2: मतलब आप आपका हम देख सकते हैं आपका जो वेबसाइट है।
0: हाँ, आपके साथ इंटरनेट है दुकान में?
2: हाँ,
0: इंटरनेट है दुकान में।
2: दुकान पे अभी तो नहीं है, हमने बंद किया हुआ है पहले था, मतलब मोबाइल पे यूट्यूब में लगा हुए फिर देख सकता है, और उसका अलग कोई।
0: YouTube में लगाए, Google में लगाओ,
2: Google
0: में लगाओ तो देख सकता है, सब तस्वीरें सारा आते हैं, जो अखबार में शाया हुआ वो भी देख सकता है।
2: सही, सही, अच्छा बात। दानियाल भाई, परिंदे भी अल्लाह का मखलूक है?
0: बिल्कुल यार,
2: अगर इसको बैठ के आज़ाद करें दानियाल भाई, अच्छा है।
0: हाँ ना, इस तरह तो अच्छा नहीं है बंद करके।
2: हाँ, सही बात है दानियाल भाई, बस ये मुँह कम साई का है, कभी कभी मैं इधर लाता हूँ, लगता हूँ ना थोड़ा सा इधर ही इसी खाते से ये आवाज़ें मुआवजे भी निकालते हैं ना इसी खाते से वो संभाल करते हैं। फिर उन्होंने इसको दो बार बोला इसको परिंदे को बंद नहीं करो आज़ाद करो ये भी अल्लाह का मखलूक है ना इसी
3: تغیر شیر شهری والا مواجه
4: صحیح

0: Adam el bey mazakir. Sen ne kam? Ha? Ha ya la bir fresh ho gaya Adam el bey. Aur aap theek ho? Khair khairiyat hai.
1: Gambhi bahut
0: hai. Ha?
1: Gambhi bahut hai light aayega
0: sahi. Ha. Oye. क्या ओके हो गया हाँ ओके हो गया दानियल भाई जब कर देखो यार जब बोलेगा लेट नहीं लेट है भी आ जा जब आप बोल दिया लेट भी आ गया दानियल भाई आप ऐसे सच्चा बंदे बोलने में आपको बिजली आएगा आप पहले बोलता था फिर ले आता थे दानियल भाई कैमरा मारा तो सोनी है जी अभी
1: दिखा
0: ये कैमरा ही दानियल भाई कम से कम 13 साल होएगा आज से 13 साल होएगा उस टाइम में बॉर्डर से आता था चमन बॉर्डर से दानियल भाई 1000 रुपया था हमारा खर्चा बॉर्डर पे इधर फिर कोचे में 1500 ऐसा 1600 2000
1: कितना मेगापिक्सल है
0: इसका 5 मेगापिक्सल है पिक्सल कम है यार पिक्सल कम है बहुत
1: अभी तक ये चलता
0: है हाँ ये चलता है अभी तो
1: और मेमोरी कार्ड कितना है
0: मेमोरी कार्ड भी इसका कम है एमबी है हाँ कितने एमबी है बहुत कम है यार तकरीबन 30 तस्वीर लेगा ये एमबी है दानियल भाई आपका कौन सा कैमरा है
1: ये भी सोनी है
0: सोनी है
1: एक तो डीएसएलआर
0: हाँ
1: डीएसएलआर के बाद एक और कैमरा आता है मिररलेस कहते हैं उसको डीएसएलआर वाला ही है लेकिन उससे थोड़ा नया
0: हाँ ये तकरीबन आपने कितने ले लिए
1: कितने में लिया होगा
0: हाँ
1: ये आज से 4 साल पहले मुझे 1,70,000
0: 1,70,000 इसमें आप हमारे तस्वीर खींच रहे हैं दानियल भाई
1: इसमें
0: हाँ
1: सारा दिन
0: तो आप इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
1: तस्वीर खींच तो लूंगा फिर आपको किस तरह दे दूँ यदि यहाँ पे खींचो कहाँ पे खींचो
0: जैसा आपका मर्जी लगे
1: एडिटिंग कर
0: एडिटिंग मसला नहीं एडिटिंग आप करें नहीं फिर हम खुद करेंगे

0: मैं आपको दे दूँ, आप बैकग्राउंड क्या लगाओगे इसमें?
1: बैकग्राउंड फिर लगाएगा कोई ऐसा मर्जी जो फूल मूल लगाएगा इस तरह। आपको दिखाओ इस तरह पर्दे मर्दे हो जाए, इस तरह बैकग्राउंड। हाँ, इस तरह मजा नहीं देता, इस तरह बैकग्राउंड हो जाए जैसे नहीं है, इस तरह बैकग्राउंड नहीं हो जाए जैसे वो शादी मादी के जो पीछे खूबसूरत बनाएगा उसी तरह। हाँ, दानियाल भाई इसमें बैठे कैसे है? दानियाल भाई इसमें सही नहीं है कुर्सी में इस तरह?
0: ऊपर आप बैठो, कुर्सी रख, पीछे पर्दे पीछे
1: करो। इस तरह बैठे दानियाल भाई?
0: हाँ ये
1: सब ये किस तरह इस तरह बैठेगा दानियाल भाई? दिखाओ दानियाल
0: भाई,
1: माशाल्लाह अलग कैमरा है दानियाल
0: भाई, कैमरा लगा इसको देखिए
1: तो भाई एक एक दाग को दिखाएगा कसम से।
0: स्माइल के बगैर किस तरह नहीं?
1: और दिखाओ दानियाल, कुर्सी वाला,
0: कुर्सी वाला अच्छा।
1: अरुण तो नारे वक्त खबर
0: भाई कल क्यों नहीं आए थे?
1: कल दानियाल भाई घर में मेहमान आया हुआ था,
0: हमें आया था दुकान बंद
1: था। हाँ दुकान बंद था, हमने आ गया था फिर चला गया, फोन आ गया बोलते मेहमान आ गया उधरी में घर पे गया ना मेहमान का, मेहमान आया हुआ था उधरी इसी खातिर से गया था। फिर कल धमाका भी हुआ था ना, हालत भी सही नहीं था इसी खातिर से, मेहमान भी आया तो हमने छुट्टी किया। देखा दानियाल बिस्किट देखा,
0: कल धमाका बहुत जोरदार हो गया था।
1: बस उतना जोरदार भी नहीं हुआ, हल्का फुल्का धमाका हुआ है, फिर बाजार खराब किया ना, फिर घर में मेहमान भी आ गया, फिर हम बिल्कुल चला गया, हमने बोला छोड़ो बस आज नहीं आ जाएगा।
0: आपको आवाज़ आ गया था धमाके का?
1: हाँ आवाज आ गया।
0: मैं सुबह आ गया ना तो नूरगुल ने मुझे बोल दिया दुकान बंद है और धमाका भी हुआ तो मैं परेशान हो गया था।
1: हाँ धमाका हुआ था, धमाका हुआ था यार भाई, आवाज आ गया था हमको सुना हुआ
0: है। नहीं उस वक्त आवाज़ नहीं आया था लेकिन उतना दूर तो नहीं हुआ था, करीब में था। पता नहीं खुदकुश था क्यों था
1: ये मालूम नहीं दानियाल भाई, खुद कुछ था नहीं था मतलब धमाका हो गया। जब बाजार में धमाका हो जाए फिर कारोबार भी स्लो हो जाएगी, लोग डर जाएगी फिर नहीं आता है बाजार।
2: मेरा चिमशिया

0: दानियल भाई अभी आप जो एजेंट से बोलो, एजेंट एजेंट तो समझते हैं जो बाहर मुल्क का जो एजेंटी करता है, उससे आप पूछो ना, वो बोलता है अभी आप पूछो, बोलते हैं बाहर जाएगा। हाँ यार दानियल भाई अभी अभी जाओ, कोशिश करो पैसा बंदोबस्त करो, अभी जाओ, रास्ता इतना जफा इतना ज़बरदस्त है, वी आई पी है, मगर सब झूठ है रंडी का बच्चा, पैसे की वजह से आपको ऐसे उस जगह पे आपको फंसाएगा, अल्लाह का फ़ोन कुछ नहीं करता, क्या भूखा है, मर जाएगा, क्या होएगा, बोलता है नहीं सही होएगा होएगा, रास्ता सही है, अपने पैसों की वजह से लोग को ख्वार करता है इस मादर लोग। लालिश भी सही नहीं है आपका, बात सच है। सुलेमानी शाही पियोगे दानियल भाई? सुलेमानी शाही पियोगे?
1: हाँ पियोगे।
0: हाँ
1: आप पियोगे?
0: ये वाला क्या चाय वाला, ये चाय वाला
1: चला गया, चाय वाला
0: भाग्य इंसान ना अभी आएगा, इंसान आगे देखेगा, इधर भी शुक्र है थोड़ा सा कमाएगा, इधर ही खर्च करेगा, पैसा इधर भी है दानियल भाई, कसम से लोगों इधर से करोड़पति हो गया। अभी हम लोग एक साइड एक इधर हम लोग का एक हमारा दोस्त का दोस्त है लंदन का, विजिट लंदन का, उसके पास नेशनलिटी हर चीज़ है, मगर वो लंदन पे नहीं जाता है, बिजनेस इधर ही करता है, इधर ही उसका फ़ायदा ज़्यादा है।
1: हाँ असल चीज आप घर पे हो जाओ ज्यादा फायदा है।
0: कसम से यार आगे